इंग्रेडिएंट्स दी औदग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमच सिर्फ और सिर्फ पसलूर उसपो की दनन दनन स्तासु दानी और दानु दागुना प मुकमल तोगबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

ओके जनाब राजे प्रोग्राम सब जोड़े के मैसेजेस पर कॉल बहुम कवे सही दा और पर टॉपिक वन पर डिस्कशन हम कवे सही दा जमंग टॉपिक दा दे जनाब रिश्ता पखपलो के पकार दा कप प्रदो के पकार दा पखपलो के मतलब दा छ पखपल टबर के पकार दा पखपल फैमिली के पकार दा या बाहर पकार दा सही दा कॉल पर कवे पसे पर 938 280 495 में बांध दीजिए।

0: Okay, G. Let me check who is there. Once again, this is Imran Khan, FM 94 Dilbar Sawabi. Assalamualaikum, Ji, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello. आवाज सही ना राजी सासू जी. ओके जी पता नहीं लगी था सब जरा आवाज माता क्लियर ना राजी हो पर भी. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब सुख दिकम जन पखेर अगल गुलाबा इमरान खान एफएम 94 दिलबर सवाबी. अस्सलाम वालेकुम जी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हेलो आवाज सही ना राजी सासू जी. ओके जी पता नहीं लगी था सब जरा आवाज माता क्लियर नरा

0: रेडियो दिल अभी भी गर्म सुनिए हमार लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: वेलकम टू F4 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी AM to 1 AM।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: वेलकम टू FM 94, ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम स्वाबी, फ्रॉम 5 AM टू 1 AM।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

दिन अलावा यू रीजन दाम की गीचे अक्सर खानदान के दननाद तेर सरो दरावतलो रुझान बेतहा डेर जाती दागे बोझ माने हम जिदन तेर सरे डेर जातर रवान हुई यानी खानदानी खानदानी दे तेर सरो का मसली दी मदार रवानी हुई नो दहागी बोझ माने हम जिदन द तेर सरो मसली डेर जाती हुई न पैगाम द तजमा बेहतर दारे ची द बेलेडोना ब्यूटी किट ने शुरुआत हो गई और सर बेलेडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश जानते वाली बेलेडोना ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम जानते वाली आओ द तेर सरो मुकम्मल खात्मा हो गई जी उस कुछ रही जी नहीं दावे ची न तेर सरे में बमक माने निश्चित सर वाड़ मची जुत कस्पी ने समझी न द आगे द बार हो लगोर मंग जोरदार आओ द क्रीमानो बादशाह तेल राउले जी यही तो वेलेगी बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम बादशाह दिल राउड़े दिन मेहरबानी की जी जानत द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर न द मख द खाइस बादशाह जानत वाले जी द स्पिन वाली दरावस्तलो ठेकेदार जान वाली जी बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम जान वाले खो कचरी यू जिने दावे चिना जोखो स्पिन वाले वालम हो जमा मकमान डेर बेंतहा तेर सरे दे और जोख वालम ची तेर सरे में हम रुक्षी जमा मकमान स्पिन वाले हम रशी न ब्याद द तेर सरो ठेकेदार दल वाले जी द तेर सरो ठेकेदार यू दांस ठेकेदार दे जो दगा ठेकेदार कार दादे जो तेर सरे बदल द मुंडू बासी न ब्याद द तेर सरे ठेकेदार बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम और ची तेर सरे दल उरुखी न स्पिन वाले बहुम दल रावली मकसद में दादी कचरी स्पिन वाले हम वाली और तेर सरे हम खत्म हो वाली न ब्याद सरे बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश वाली और कुता सोच ना तेर सरे जमा बमक माने निश्चित याश तो होते मामूली होंगे गिरे मैं आगे दबार ऑर्गेनिक क्रीम बिल्कुल मां खले जी आगे दबार जमंगे बेलेडोना विटामिन सी क्रीम मिलावेगी बेलेडोना विटामिन सी फेस वॉश मिलावेगी दगद सरवाखली और दनवर न दबच के दोबार और सरा बेलेडोना सनब्लॉक जान लगा ली और लड़के जी लड़के दिमाग दा मसले मदर सर मुकम्मल लड़के जी सिर्फ दगा यू रिक्वेस्ट कॉल वाला मची जमा क्रीम या जमा प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल हुई न कम से कम द लस रोज पूरी या पिंजल लस रोज पूरी पहले नहीं पिंजल लस रोज पूरी कजई और की बिल्कुल मरा वाली जी ना सुबह गोरी सीखी जी द लाइफ कॉल लारी यानी तासुम सर दनन रोजी संग जमा प्रोग्राम शुरुआत के दावे ली जनन रोजी खास कर जमंग तासुल दरकु यो डेर खंदोरा और मजेदारा कुरान दाजी बल्कि दल में यो गिफ्ट रावले दी जी आगे गिफ्ट दादी जी तासुम मुंग तकाल ग्राम मिला हुई सिर्फ सिंपली मुंग सर बखबरी कोई और मोहतरम समीना बच्चे दोनों अल्तजान सर नमूने लिखी और नमूने लिखलो न बाद बबिया अगले बबिया बॉक्सेस और कई او د هغه بوکسز دلاره بیا د هغه بوکسز دلاره بسوشي د هغه بوکسز دلاره بیا موږ قران دازي کو د پینزور زو دیاری تاسو نن دغه نیمه ګنټه کې تاسو ګټلې شي او د پینزور زو د دیالۍ د ګټلو لپاره به تاسو مهرباني وکړئ موږ ته بس صرف کالز را ملاوي زموږ سره سلام دعا کوي او زموږ سره د سلام دعا کولو نه بعد بیا ننانی ورز دا محرم الحرام خصوصی کم نشریات زمان سر روان دی دیکھ بتاسو من تا کالز نامی لوکی من بستاسو کالز زان سر روالو او دا کالز دا آغستلو نباد بیا مشتی نسکو جی

0: मोबाइल नंबर 0335-666-2878 द्वयम नंबर दे 0336-444-5588।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास।
3: स्तासु पल चैनल रेडियो दिलबर
4: स्तासु रेडियो दिलबर रेडियो।
5: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
6: This radio station plays only music.
7: Today's best music.
8: I'm

घंटे सर्विस, लेबर रूम, अल्ट्रासाउंड, इको, ईसीजी, पेशेंट मेडिकल वार्ड, जनरेटर और नोटो जरूरी सहूलियत मौजूद थी। नोपतयात साथे और तशरीफ रौड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर, अयास प्लाजा, जड़ा में लेलार टोपी। मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878। द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।
3: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

इदिन अलावा यो रीजन दाम की गई छे अक्सर खानदान के दनन आद तेर सरो दरावतलो रुझान बेंतहा डेर जाती दागे बोज माने हम जदन तेर सरे डेर जात तर रवान हुई यानी खानदानी खानदानी दे तेर सरो का मसली दी नदार रवानी हुई नो दहागी बोज माने हम जदन द तेर सरो मसली डेर जाती हुई न पैगाम दे तजमा बेहतर दारे ची द बेलेडोना ब्यूटी किट ने शुरुआत हो गई और सर बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग फेस वॉश जानते वाली बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटनिंग क्रीम जानते वाली आओ द तेर सरो मुकम्मल खात्मा हो गई जी उस कुचरी यू जिन्हें दावे चीन तेर सरे में बमक मानी मिश्र सिर्फ वाड़ा मची जुत कस्पी ने समझी न द अगे बार हो लगोर मंग जोरदार आओ द क्रीमानो बादशाह तेल राहुल जी अगे तो वे लेगी बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम बादशाह दिल रहा उड़े दिन मेहरबानी की जी जानते द नजदीक कॉस्मेटिक्स जनरल मेडिकल स्टोर न द द मख द खाइस बादशाह जानते वाले जी द स्पिन वाली दरावस्तलो ठेकेदार जान लो वाली जी बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला फेस वॉश बेलेडोना विटामिन सी फार्मूला क्रीम जानते वाले खो कचरी उज नहीं दावे चिना जो स्पिन वाले वालम उस माप मकमाने डेर बेंते हाथ तेर सरे दे और जो वालम ची तेर सरे में हम रुक्षी उस माप मकमाने स्पिन वाले हम रशी न ब्याद द तेर सरो ठेकेदार दल वाले जी द तेर सरो ठेकेदार उदास ठेकेदार दे जो दगा ठेकेदार कार दादे जो तेर सरे बदले द हिंदू बासी न ब्याद द तेर सरी ठेकेदार बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटिंग क्रीम और ची तेर सरे दल उरुक्षी न स्पिन वाले बहुम दल रावली मकसद में दादी कचरी स्पिन वाले हम हुआड़ी और तेर सरे हम खत्म हो हुआड़ी न ब्याद सर बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटिंग क्रीम बेलेडोन ऑर्गेनिक व्हाइटिंग फेस वॉश वाली और कुता सोई ची ना तेर सरे जमा बमक माने निश्ते याश्ता होती मामूली हो गई न आगे द बार ऑर्गेनिक क्रीम बिल्कुल मां खली जी आगे द बार जमंग बेलेडोना विटामिन सी क्रीम मिलावेगी बेलेडोना विटामिन सी फेस वॉश मिलावेगी दगद सर वाखली और दनवर न दबच के दो बार और सरा बेलेडोना सनब्लॉक जान लवाली और लड़के जी लड़के दिमाग दा मसले मुदर सर मुकम्मल लड़के जी सिर्फ दगा यू रिक्वेस्ट को लगवारा मची जमा क्रीम या जमा प्रोडक्ट्स कलम इस्तेमाल हुई नु कम अज कम द लस रोज पूरी या पिंजल लस रोज पूरी पहले नहीं पिंजल लस रोज पूरी कजई और की बिल्कुल मरावली जी तासु बे गोरी छ सिकी जी द लाइफ कॉल लारी यानी तासु मुसर दनन रोजी संग जमा प्रोग्राम शुरुआत की दावे ली जनन रोजी खास कर जमुंग तासु लदर को यो डेर खंदोरा औ मजेदार कुरानदाजी बल्कि दल में यो गिफ्ट रावले जी आग गिफ्ट दादी तासु मुंग ते कॉल रा मिला हुई सिर्फ सिंपली मुसर बखबरी कोई औ मोहतरम समीन बजदन वाल तजान सर नमून लिखी औ द नमून लिखल न बाद बबिया अगले बबिया बॉक्सेस और कई औ द आग बॉक्सेस दिलारे बबिया द आग बॉक्सेस दिलारे बसुशी द आग बॉक्सेस दिलारे बबिया मंगो कुरान अजी को द पिंजोर जो दियाड़ी था सो नन दगा निम घंटा के था सो गटले शी ओ द पिंजोर जो द दियाड़ी द गटलो द बार बता सो मेहरबानी हो कई मुंग तो बस सिर्फ कॉल्स रा मिला हुई जमुंग सर बस सलाम दुआ कोई ओ जमुंग सर द सलाम दुआ कोलो नबाद बिया ननने उरस द मुहर्रम उल हराम खुसूसी कम नशरियात जमुंग सर रवान दी देख बता सुमु तो कॉल्स रा मिला ओके मुंग बस तासु कॉल जान सर वालू और द कॉल्स द अगस्तलो नबाद बिया मुश्तियन सुकुजी मुझ बच दन बिया

0: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से जायद तलबा तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर रابطہ कर सकते हैं।
1: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी तसिंगलार शमा।
1: ओहो पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स, फोन 09382732 65।
3: टोपी मेडिकल केयर सेंटर कमजे चिप मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आन द अवाम द खिदमत लपारा मौजूद हुई चिपकी डॉक्टर आमिर असलम कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट द इतवार परवज लस बजो ना तरमा खाम सलोर बजो कोरे लेडी डॉक्टर फरीहा मुश्ताक फिजियोथेरापिस्ट द फिर न तर जुमेरात रस कोरे सहर नहो बजो ना तरमाजीगर सलोर बजो कोरे डॉक्टर विकास अहमद कंसल्टेंट एंड साइकेट्रिस्ट द इतवार परवज यवोलस बजो ना तरमास्पिन ब्रे बजो कोरे गायनोकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर इकरा रफीक माहिर अमराज जच्चा बच्चा द पीर नतर हफ्ते पूरे माजीगर द सलूर बजो न तरमास्कोतन अतो बजो पूरे बाओपी डिकवी जमू सहूलियात ती 24 घंटे सर्विस लेबर रूम अल्ट्रासाउंड इको ईसीजी पेशेंट मेडिकल वार्ड जनरेटर और नोटो जरूरी सहूलियात मौजूद थी नो पता याद साते और तशरीफ रावड़े टोपी मेडिकल केयर सेंटर अयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878 द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।
4: सर्दी हो या गर्मी रेडियो दिल पर आपके संग संग
5: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।

टपाउ कुए चे तबा द कम महफिल डिवे तबा द कम महफिल डिवे जद बिल्तुन पतो रश्पके नास्ता यमा वही जार।

चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग, चेहरे बदल बदल कर मिलते हैं मुझसे लोग, इतना बुरा सुलूक मेरे सादगी के साथ।

0: भरोसा
1: तो मिलना क्या बिछड़
0: भरोसा दुआ वफा ख्वाब मन मोहब्बत
1: हो बना
0: कितनी नामों में समेटे हो सिर्फ एक तुम।